0: बेस चला कैमरा विट पर फेर के 1100 होगा।
1: Whippers got fixed camera on you.